कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिवयन्ति सोव दुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिन धम्मं

तीर्थंकर परमात्मा का सुधर्मा स्वामी के हृदय में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा है। जिसको जिया सुधर्मा स्वामी ने, जिसको जी रहे सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से उनके हृदय में जिस तीर्थंकर महावीर की श्रद्धा में प्रतिष्ठा है, वो चैतन्य स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा को प्रदान करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम भी प्रार्थना करें।

जम गेंजी मिच्छाए मंदु कुड़ाए वाय दुकड़ा गाय दुकड़ाए कोहाए मनाए मायाए लोहाए सव कालियाए सव मिच्छोराए सव धमाए कोनाए जो मे देवसी अयारो कहो तस्क मासुनो बड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी।

तीन दिशाएं बाहर है, तीन लोक बाहर है, तीन लोक अंदर है। तीन प्रकार के लोक होते हैं, तीन प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, तीन प्रकार का विजन होता है। एक विजन है, एक दिशा है, ऊर्ध्व दिशा है। परमात्मा ने जो धर्म कहा वो किस आधार पर कहा, इंद्रभूति सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं। क्योंकि सुधर्मा स्वामी ने जम्बो स्वामी को कहा, जानाई धम्मम च धीयम च पे, तो परमात्मा के धर्म को जाने। और किसी को जानना हो, किसी का बोला हुआ समझना हो, तो किस आधार पर बोल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। किस आधार पर धर्म का उन्होंने, उद्धम अहेयम तिरियम दिशासु, कुछ लोग ऊंचा ही देखते हैं, ऊर्ध्व दिशा, कुछ लोग एवरेज में चलते हैं और कुछ लोग लोएस्ट होते हैं, उनको वैसे ही दिखते हैं। एक ऊपर लोक है, एक मध्य लोक है, एक तिरछे लोक है। इन तीनों ही लोक में, इन तीनों ही दिशाओं में, बाहर की बात कर रहा हूं पहले, फिर अंदर की बात करेंगे। आपके अंदर भी तीन लोक है, बाहर में भी तीन लोक है, नरक बाहर में भी है, नरक अंदर में भी है, मध्य लोक बाहर में भी है और मध्य लोक अंदर में भी है, ऊर्ध्व लोक बाहर भी है और ऊर्ध्व लोक अंदर भी है। और अंदर के ऊर्ध्व अंदर के लोक से तय होता है कि जीव किस लोक से निकलता है तो उसी लोक में पहुंचता है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी किस वाक्य को पकड़ लीजिए, जिस लोक से जीव निकलता है अंतिम समय में उसी लोक में पहुंचता है। अधोलोक से निकला तो अधोलोक में पहुंचता है, मध्यलोक से निकला तो मध्यलोक में पहुंचता है, और ऊर्ध्वलोक से निकला तो ऊर्ध्वलोक में पहुंचता है। ये ठानांग सूत्र में गया है कि कौन से गति में जीव गया है, कौन से लोक में गया है। कंबर के नीचे से उसके प्राण निकले हैं, कंबर के ऊपर से लेकर नाभि तक गए हैं तो तिरियंच गति, नाभि से लेकर हृदय स्थल तक गया है तो मनुष्य गति, और हृदय स्थल से लेकर तो मस्तिष्क तक गया है तो देवलोक, और पूरे शरीर से निकला है तो मोक्ष, सर्वांग को स्पर्श करके निकला है तो मोक्ष है। जिस लोक से आप निकलते हैं उसी लोक में पहुंचते हो। ये बाहर का लोक भी है, अंदर का लोक भी है। हम अंदर भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, कभी अंदर में हम ऊंचा देखते हैं, कभी नीचा देखते हैं, कभी स्वयं को बहुत ग्रेट समझते हैं, कभी स्वयं को बहुत रिग्रेट करते हैं, सब कभी ओके चल रहा है। ये तीन लोक है, ये तीन दिशाएं कही, कोई तीन दिशा कही, दिशा मिस एटीट्यूड। उद्धम अयम तिरियम दिशा सो तस्सा ये जे थावर जे ये पाना, दो प्रकार के लोग हैं, तीन लोक बाहर हो गए और तीन लोक में रहने वाले लोक दो प्रकार के। कुछ लोग तरस है, कुछ स्थावर है, कुछ तरस है, कुछ बोलो, कुछ कुछ स्थावर है। किसको कहते हैं स्थावर?
जो रिसीव करता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देता है, जो रिसीव करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। रिसीव, नो रिस्पॉन्स। पृथ्वी रिस्पॉन्स नहीं देती है, एकेंद्रीय जीव रिस्पॉन्स नहीं देते, हलन चलन करते। उनमें भी कई जीव है, एकेंद्रीय में भी कई जीव है जो रिस्पॉन्स देते हैं, और साइंस इसको प्रूव कर रहा है कि वनस्पति रिस्पॉन्स देती है, पानी रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ जीव रिस्पॉन्स नहीं देते। आप रिस्पॉन्स देते हो? हेलो, सवाल का जवाब देना उसको रिस्पॉन्स देने कहते हैं। जब सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो समझ जाना सामने वाला स्थावर है। और ये मैं बोलता हूं, ऐसा नहीं, आप भी बोलते हो, आपको भी कई बार फील होता है कि जब आप किसी कुछ बोलते हो और उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपके मन में आता है, मैं क्या दीवार के सामने हूं, कड़े दीवार ने माथो बचड़ रही हो, केवल हाथ ऊपर कर लो। जिन्हें आप फीलिंग जिंदगी में कभी नहीं हुई, हेलो, एक भी नहीं, चरके वाटे आप लोग पारा के लिए से पड़े हो, दीवार से पाला पड़े हो, लगे नहीं लगे था नहीं लगे ना, उन्हें स्थावर के वे कही के, उन्हें स्थावर के वे। रिस्पॉन्स देने वाले लोग भी दो प्रकार के, रिस्पॉन्स देने वाले लोग भी दो प्रकार के, एक सज्जन को रिस्पॉन्स देते हैं, एक दुर्जन को रिस्पॉन्स देते हैं, एक एक्टर को रिस्पॉन्स देते हैं, एक कैरेक्टर को रिस्पॉन्स देते हैं, एक सत्ता को रिस्पॉन्स देते हैं, एक सत्य को रिस्पॉन्स देते हैं, एक धर्म को रिस्पॉन्स देते हैं, एक धन को रिस्पॉन्स देते हैं, एक परमात्मा को रिस्पॉन्स देते हैं, एक शकुनी को रिस्पॉन्स देते हैं। इतरस जीव भी दो प्रकार के, और जो परमात्मा को रिस्पॉन्स देता है, जो देव गुरु धर्मों को रिस्पॉन्स देता है, आगम कहते हैं, वो सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं। और जो देव गुरु धर्म को रिस्पॉन्स नहीं देते उनको मिथ्यात्मी कहते हैं। जो धर्म को रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिनेश्वर के वाणी को रिस्पॉन्स नहीं देता है, जो महावीर को रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो मिथ्यात्मी है। जो परिशन पुरु को रिस्पॉन्स नहीं दे, जो सवंसरी को रिस्पॉन्स नहीं दे, जो प्रार्थना को रिस्पॉन्स नहीं दे, जो क्षमापना को रिस्पॉन्स नहीं दे, मराठी के वो कहावत है ना, भैंस के सामने बिन बजाई, उसको स्थावर कहते हैं। स्थावर का एक ही कैरेक्टर है, थाने जुको बोलो, जुको बोलो, मैं हे जिसो हूं, आई एम प्रूफ, नो इफेक्ट। धूप आई तो भी मैं यहीं पर हूं, ठंडी आई तो भी मैं यहीं पर हूं, तुम गुस्सा करो तो भी मैं यहीं पर हूं, तुम प्रेम करो तो भी मैं यहीं पर हूं, मैं जैसा हूं। हेलो, और मुझे लगता है इस फीलिंग में से सब जाते होंगे, मैं तो जाता हूं,
पहले मैं उचकता था, जब स्थावर मिलते थे ना तब मैं गुस्सा करता था। अब मैंने स्थावर पर गुस्सा करना बंद कर दिया, अब मैं केवल त्रस पर गुस्सा करता हूं। हेलो, किस पर गुस्सा करता हूं? त्रस पर गुस्सा करता हूं। एक अनुभवी व्यक्ति ने लिखा है, जब तुमसे कोई नाराज होना बंद हो गया तो समझ लेना को तुमसे दूर चला गया है। हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? नाराज होने के लिए भी आत्मीयता लगती है, केवल साथ में बैठने से तुम आत्मीय नहीं होते हो। तेतरस दो प्रकार के, कुछ लोग तीर्थंकर महावीर को रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ लोग मुदगर पानी को रिस्पॉन्स देते हैं, और मुदगर पानी को रिस्पॉन्स देने वाले एक न एक दिन हत्यारे बन ही जाते हैं, और महावीर को रिस्पॉन्स देने वाले एक न एक दिन हत्यारे को सिद्ध साधक बना ही देते हैं। तस्सा ये जे थावर जे ये पाना, कुछ लोग त्रस है कुछ थावर है। से नीचे नीचे बड़ा गजब है, बहुत गजब है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता है, बोलो ना। हरि अनंता महावीर अनंता, महावीर कथा अनंता है। अब ये सुधर्मा स्वामी के महावीर है, ये सुधर्मा स्वामी के हृदय के महावीर है। बहुत गजब की बात है। से नीचे नीचे, ऐसा नहीं ना कि त्रस हमेशा त्रस ही रहता है और स्थावर हमेशा स्थावर ही रहता है, ऐसा भी नहीं। कभी वो रिस्पॉन्स देता है, कभी वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। डॉक्टर के पास जब सीरियस पेशेंट जाता है ना, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? रिस्पॉन्स देवे कहीं नाड़ी बाद में, नाड़ी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी रिस्पॉन्स देती है क्या? और बॉडी रिस्पॉन्स देती होगी तो ट्रीटमेंट करता है, और बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती तो ट्रीटमेंट करना वो कहता है। स्थावर पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्थावर पर ट्रीटमेंट नहीं होती है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाए तो पेड़ भी खिल जाता है। तीर्थंकर परमात्मा जहां विराजमान जाते हैं, बड़ी गजब की पुरुषाकर पराक्रम के थोड़ी स्पेशल साधना का एक स्तोत्र चल रहा है, एक ही भाव स्तोत्र, और उस एक ही भाव स्तोत्र में बड़ी गजब की बातें गई। समोशरण की रचना डायमंड से होती है, क्या कैसे होती है? डायमंड से होती है। अब वो भी डायमंड है और तुमने पहना हुआ भी डायमंड है। रमेश थोड़ा सा आवाज बजा, आवाज सर्कल करना। वो भी डायमंड है और तुमने पहना हुआ भी डायमंड है, लेकिन तीर्थंकर के समोशरण में जो डायमंड है वहां सांप और निवला बैठ जाए, चेंज हो जाता है, और वही डायमंड दूसरी तरफ रख लो तो देवताओं में अंतर नहीं आता है। ये कहा वादी देव सूरी ने,
कि वो डायमंड भी तुम्हारे सानिध्य में आकर के चेंज हो जाता है। डायमंड भी तुम्हारे सानिध्य में आकर के चेंज हो जाता है। डायमंड क्या है? स्थावर है, वो भी चेंज हो जाता है। वो चेंज करता भी है और चेंज हो भी जाता है। ये नित्य अनित्य है। कैसे? ऐसा नहीं कि त्रस हमेशा त्रस रहेगा और स्थावर हमेशा स्थावर रहेगा। कभी स्थावर त्रस भी हो जाता है और कभी त्रस स्थावर भी हो जाता है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है अपनी। थकान महाराज जिंदगी सबसे बड़ी मुश्किल कही है। वो कभी बात ने समझे कभी नहीं समझे और अपना ने समझ में से नहीं आवे कभी समझेला कभी नहीं समझेला। और अपन सोचो कि ने ये समझे को नहीं मन अपन समझाए नहीं तो आईने अपने के लाते मैंने क्यों था तुम्हें था कि बात मान लेता हूं। मैं कभी नहीं मानी था कि बात थे मैंने बोले इसको नहीं बोलने का देखता थे मैंने यस हेलो बराबर है कि हाँ। कभी अपन रिस्पॉन्स देवा कभी रिस्पॉन्स कभी अपना पग रिस्पॉन्स देवे कभी अपना अधोलोक रिस्पॉन्स देवे कभी अपना मध्यलोक रिस्पॉन्स देवे और कभी अपना वृद्धलोक रिस्पॉन्स देवे। हेलो मैंने ज्यादा खोलन मत लगाओ थे समझता जाओ ना तो अच्छा लगेगा। गुरुदेव फरमाते थे गधे से गधे मिले करे लातों से बात। गुरुदेव कहता था थे जाने गुरुदेव आनंद प्रवचन बस ले जाओ गधे से गधे मिले करे लातों से बात पंडित से पंडित मिले करे ज्ञान की बात। अगलो कहीं नहीं बोलो मैं अभी नहीं इतना तो थे समझदार हो ही गया तो बोले मुझे अगलो थे समझ जाओ। कभी हमारे पग रिस्पॉन्स देते हैं कभी हमारा पेट रिस्पॉन्स देता है कभी हमारा दिल रिस्पॉन्स देता है कभी हमारा दिमाग रिस्पॉन्स देता है कभी हम बहुत ऊंचा रिस्पॉन्स देते हैं कभी हम बिल्कुल नीचा रिस्पॉन्स देते हैं। ये बदलते रहता है। जरूरी नहीं कि हमेशा वही रिस्पॉन्स रहेगा। से नीच नीचे इन समीख पन्ने उन्होंने प्रज्ञा से इसकी समीक्षा करी। बड़ा गहरा है समझते चले जाओ। मुझे मुझे मुझे थोड़ी सी परमिशन दीजिए कि मैं आज मेरे धुन में बोलता चला जाओ तुम्हारी परवाह करे बिना। समीख पन्ने उन्होंने इसकी प्रज्ञा से समीक्षा करी अनुभव से समीक्षा नहीं करी पाष्ट के आधार पर समीक्षा नहीं करी प्रज्ञा से समीक्षा करी। समीख पन्ने प्रज्ञा से समीक्षा करी। अर्जुन माली सामने आया लगा कि ये आज तक ऐसा था अभी भी ऐसा है ये उर्ध्व लोक से भी रिस्पॉन्स दे सकता है। समीक्षा करी उसकी और उसकी समीक्षा कर करके उसको क्षमा का धर्म प्रदान कर दिया। समीख पन्ने प्रज्ञा से समीक्षा करी। हम लोग प्रज्ञा से समीक्षा नहीं करते हम लोग अपने अनुभूति के आधार पर समीक्षा करते हैं। इन्हें काले किसो महारा सत्य वाग्य तो आज भी उसत वागीला। हमारी सारी प्रज्ञा कार्बन कॉपी है हमारी सारी समीक्षा कार्बन कॉपी है। हम प्रज्ञा से समीक्षा नहीं करते समीक्षापन ने। और यदि प्रज्ञा से समीक्षा करेंगे
तदिवेव धर्मं समयं उदाहु पन्ना समीक्षे धम्मम। जो प्रज्ञा से समीक्षा करता है उसी को तीर्थंकर महावीर का धर्म समझ में आता है। जो परंपरा से समीक्षा करते हैं उनको तीर्थंकर महावीर का धर्म समझ में आने की संभावना माइनस है, जीरो नहीं माइनस है। मैं चलते चलते एग्जांपल दे रहा हूं आपको, चलते चलते एग्जांपल दे रहा हूं। किनका दो, आपका दो कि संतों का दो? हाँ आपका दे दो। ओके आपका परिचित व्यक्ति सामने आया और उसका पिछला अनुभव आपका अच्छा रहा तो आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और पिछला आदमी पिछला अनुभव आपका गलत रहा तो इस समय उसने कुछ भी नहीं किया है तो भी चेहरा आपका सुंदर हो जाता है तो आप, हो सकता है कि शायद वो चेंज होकर के आया होगा। कुनिक जिस समय रोज श्रीनि को मारने के लिए जाता था उस समय का उसका चेहरा, उस समय की उसकी चाल, उस समय की उसकी आंखें, और जिस दिन वो श्रीनि को क्षमा मांगने के लिए जा रहा था, वीडियो से मुक्त करने के लिए जा रहा था, उस समय की चाल अलग होगी कि नहीं होगी? उस समय का चेहरा डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? उस समय उसकी आंखें, पहले जैसी नहीं। श्रेणी उसको देख पाया क्या? यदि श्रेणी उसको देख लेता तो अगला प्रसंग ये नहीं होता है। वो उसी कुनिक को देख रहा है, आज के कुनिक को नहीं देख रहा है। कौन से कुनिक को देख रहा है? कल के ही कुनिक को देख रहा है। सॉरी, तुम केवल कैलेंडर के पन्ने पलटते हो, दिमाग तुम्हारा पुराना ही रहता है। और प्रज्ञाशील का दिमाग हमेशा नया होता है। समय का पन्ने, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं परमात्मा महावीर का। गौशालक परमात्मा से लड़ने के लिए आ रहा है, कौन? और गुस्से में आ रहा है, भयानक गुस्से में आ रहा है, आक्रोश में। और भगवान महावीर ने सारे साधु साधियों को बुला करके कहा, गौशालक आएगा, अनसेंट बोलेगा, तुम उसके साथ बात मत करना, तुम उसको रिस्पॉन्स मत देना, तुम उसको रिप्लाई मत देना, तुम उसके साथ कम्युनिकेशन मत करना, चुपचाप बैठे रहना, कुछ भी हो जाए वो कुछ भी बोले रिस्पॉन्स मत देना। इंद्रभूति गौतम को कह दिया, सुधर्मा स्वामी को कह दिया, सबको कह दिया। उसमें दो जने थे जो मेरे भाई थे, यस मेरे भाई थे, मैं उनको हमेशा मेरे भाई कहता हूं। एक था सर्वानुभूति अनगार, एक था सुनक्षत्र अनगार। वो गौशाला का आया और भगवान महावीर को अंटसंड बोलने लग गया। वो सर्वानुभूति उठा, भगवान ने कहा था मत बोलना, भगवान ने कहा था मत बोलना, लेकिन सर्वानुभूति उठा, मेरे प्रभु को मेरे सामने कोई बोलेगा और मैं चुप रहूंगा, इतना खून मेरा मरा हुआ नहीं है। बाकी कुछ भी बोलता मैं सुन लेता, मेरे प्रभु के विषय बोल रहा है, मेरी जिंदा रहते मेरे सामने मेरे प्रभु का अपमान,
उठा और गौशाला को ललकारा उसने, अरे कृतज्ञ, अरे नमक हराम, जिसने तुझे दीक्षा दी, तुझे ज्ञान दिया, तू उन पर ऐसा बोलता है। और गौशालक ने उसके तरफ देखा और वही उसको भस्म कर दिया। तेजोलिशा थी उसके पास। अब बाद में तो सारे चुपचाप होने चाहिए, लेकिन नहीं, और एक भाई था मेरा वहां पर, वो मेरा भाई, मैं कहता हूं मैं उसका भाई हूं, मैं था को भाई हूं उसको नहीं, मैं उसका भाई हूं। हंड्रेड परसेंट मैं उसका भाई हूं। और सुनक्षत्र उठता है, सामने देखा क्या हालत होती है, सामने देखा है क्या हालत होती है, उसके बावजूद भी चुप नहीं रहा, उठा गया। बोले क्या करता है तू, अपने गुरु को ऐसा बोलता है? और सुनक्षत्र पर भी गौशालक ने तेजोनिशा छोड़ दी। वो तुरंत मरा नहीं कि तेजोलेशा थोड़ी धीमी पड़ गई थी, वो जल गया, उसका पूरा शरीर दाह करने लग गया। और वो सुनक्षत्र अंगार वो अपनी अंदर से जलती हुई काया को लेकर गई, अंदर से जलती हुई काया को लेकर, बाहर से नहीं जल रही थी, कहां से जल रही थी, अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया था, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया था। महावीर के पास जाता है, उनकी वंदना करता है, गौशालक से क्षमा याचना करता है। किससे क्षमा याचना करता है? गौशालक से क्षमा याचना करता है। और गौशालक से क्षमा याचना कर करके संलेखना लेता है, संतरा लेता है। अब आपको जो सोचना है आप सोचो, मुझे लगता है बाकी सारे जितने भी अंगार तुमने अंतगढ़ सूत्र में पढ़े, सुने, मैंने बोले, एक की भी अंतिम सांस प्रभु के आंखों के सामने नहीं हुई। ये दो ही हैं कि जिनकी अंतिम सांस प्रभु के चरणों में हो गई। कौन गौशालक की तेजोलेशा की परवाह करे? प्रभु के सानिध्य में मौत आ जाए तो तेजोलेशा की परवाह कौन करे? और मैं खोजते रहता हूं मेरे भाइयों को, जो सर्वानुभूति के नेचर के, जो सुनक्षत्र के नेचर के हो, और मैंने समर्पण चतुर्मास समिति को कहा था, परिश्रम पर्व के पहले कहा था, मुझे नेम प्लेट दो, नहीं दिए उन्होंने आज दिन तक। अब मैं खुला हूं, अब मैं बना लूंगा, क्योंकि मैंने सभा में ही कहा था उनको, सभा में ही कहा था ना। मुझे इस भूमि पर कोई गौशालक नहीं चाहिए, मुझे इस भूमि पर कोई जमाली नहीं चाहिए, और जो भी आएगा उसके सामने मैं जाऊंगा, वो चाहे तेजोलेशा मेरे पर छोड़े, आई एम रेडी। मैं परवाह नहीं करता उसकी कि तुम मुझे क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, मैं परवाह नहीं करता। मैं परवाह करता हूं तो मेरे देव गुरु और भगवान की परवाह करता हूं। जैसे तीर्थंकर महावीर ने कहा था ना सबको चुप रह जाओ, वैसे मेरे गुरुदेव भी मुझे कहते थे तो चुप रिया कर, लोग थारा दुश्मन बने तो शांति रखा कर।
मैंने कहा ना, मैं तो उनका भाई हूं, मैं उस समय भी नहीं मानता था, मैं कहता था गुरुदेव को ये दुनिया को राजी रखने के लिए मेरे पास जिंदगी पड़ी है, दुनिया को राजी रखने के लिए मेरे पास जिंदगी पड़ी है, तुम जब तक हो तब तक ही तुम्हारे साथ। और सबको पता है कि मैं बुराई लेता था, लेकिन एक व्यक्ति नहीं कह सकता है मुझे कि प्रवीण ऋषि ने कभी स्वयं के सुख के लिए किसी पर गुस्सा किया, एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है। बोला होगा तो क्यों, लेकिन बात के लिए, गुरुदेव के आराम के लिए, स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं बोला मैंने, ये मेरी गारंटी, मुझे मेरी गारंटी है, तुम्हारे प्रमाण पत्र की मुझे जरूरत भी नहीं है। उद्धम आयम तिरियम दिशा सो तस्सा ये जे थावर जये पाना से नीच नीचे ही समय कपन ने दिवे व धम्मम समयम मुदाओ। प्रज्ञा से समीक्षा करी और उसी गोशालक को, उसी गोशालक ने फिर महावीर पर तेजोलेशा छोड़ी, लेकिन भगवान महावीर पर तेजोलेशा ने टच भी नहीं किया, केवल प्रदक्षिणा करके वापस गोशालक के पास गई, उसी के पास पहुंची। बद्दुआ देने के पहले संभल जाना है, बद्दुआ देने के पहले संभल जाना, जिसको तुमने बद्दुआ दी है वो लेने से इनकार कर सकता है, लेकिन रिटर्न होगी तो तुम इनकार नहीं कर सकोगे। और उस तेजलेशा में वो जल भुन गया है, क्लांत हो गया है, संतप्त हो गया है। और फिर भगवान महावीर ने अपने साधुओं को कहा, आप तुम मन मर्जी से जो गोशाल को बोलना है बोलो। पहले क्या कहा था, मत बोलना, आप क्या कह रहे हैं, बोलो जाए नहीं, सबको भेजा और सारे पुगे ना बाटस देख रहा था, बाटस देख रहा था। और जाकर के गौशालक को इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, क्यों, पहले बोलने के लिए मना किया, बाद में बोल रहे, और बहुत बोले ये साधु, छोड़ा नहीं उसको, क्यों बोले, क्या कारण, ये प्रज्ञा है, क्या है, ये प्रज्ञा है। महावीर ने इसलिए उसको साधुओं को भेजा कि कोई एक शब्द, इतने शब्दों में से कोई एक शब्द गोशालक के दिल को टच कर जाएगा, किसी एक की ऊर्जा उसके काम में आ जाएगी और इसका अंतिम समय सुधर जाएगा, ये प्रज्ञा है। और सुधर गया गोशालक अंतिम समय। तो महावीर का धर्म खोपड़ी से जन्मा हुआ नहीं है, ये लॉजिक से जन्मा हुआ नहीं है, ये प्रज्ञा से जन्मा हुआ धर्म है, ये परंपरा से जन्मा हुआ धर्म नहीं है। और किसकी समीक्षा करी उन्होंने, वो

प्रज्ञा से जब समीक्षा करके धर्म का जन्म होता है तो वो दीप के समान होता है, वो दिए के समान होता है, वो दिव्य होता है। दीप यानी आयरलैंड, दीप यानी उजाला, वो धर्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को धम्मो दिवोत्तानम शरण गई पैठाए, जो त्राण दे। कितना ही ज्वार आ जाए, कितना ही साइक्लोन आ जाए, तो जहां समुद्र का पानी पहुंच नहीं सके उसको असंदीन दीप कहते हैं। दीप दो प्रकार के होते हैं, अगम्य दीप दो प्रकार के गए, एक संदीन दीप एक असंदीन दीप। जो नॉर्मल में तो पानी पहुंचता नहीं है लेकिन साइक्लोन आया तो डूब जाता है, और एक असंदीन दीप होता है जो कितना ही साइक्लोन आ जाए, कितना ही साइक्लोन आ जाए तो पानी वहां पहुंचता नहीं। ऐसा धर्म प्रभु ने दिया, और इस धर्म को जानने के लिए सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि तू परमात्मा के धर्म को जान। ये विरत हुई है, क्या है विरत हुई है, ये किसके भगवान महावीर है, ये महावीर किसके हैं, ये सुधर्मा स्वामी के महावीर, यानी सुधर स्वामी किसके हैं, प्रवीण ऋषि के हैं।

0: सुखदेव को, मैं जीता हूं मेरे परमात्मा को, मैं जीता हूं सुधर्मा स्वामी को, मैं जीता हूं इंद्रभूति गौतम को। इसलिए पूछे सुनम ये विरत हुई है, बस समय हो गया मेरा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। इस विरति के मेरे दरवाजे खोलने वाले कोई है तो भारत माता महासती श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, माधव नगर की दीक्षा होने के बाद हम सांगली में थे और भाई महाराज ने मुझे कहा कि आप विरति पर प्रवचन दो, और पहले विरथे पर प्रवचन मैंने सांगली में दिए। और तब से जो विरथे की यात्रा चल रही है, पिछले 12 साल से तो वो भी सुन रहा है कंटिन्यू, लेकिन उसको भी पता नहीं होता है कि आज प्रवीण ऋषि क्या बोलने वाले हैं।
1: सुबह सुबह बता दिया, सुबह झटको दे दिया चालू वन का पहले।
0: क्यों? फूल कभी बासी होता नहीं और पत्थर कभी ताजा होता नहीं। फूल कभी बासी होता नहीं और पत्थर कभी ताजा होता नहीं। बासी सूरज देखा क्या तुमने कभी? हेलो, बासी सूरज नहीं ना, फूल बासी देखा है? नहीं। फूल जैसे जीओगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, और मैं भी महसूस करता हूं, मुझे भी आनंद आता है। तुमको आता है नहीं आता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे हर साल विरुद्धि नहीं मिलती है, मुझे सुधर्मा स्वामी हर साल नया पुच्छ सुनम देते हैं, नया देते हैं, और आनंद लेता हूं मैं। और आपसे आग्रह करता हूं, अरे तिशना के जाए महावीर को तुम जानते हो, सिद्धार्थ के नंदन महावीर को तुम जानते हो, 24वें तीर्थंकर महावीर को तुम जानते हो, लेकिन सुधर्मा स्वामी ने जिस महावीर को जाया और जन्म दिया उस महावीर को तुम नहीं जानते हो। ये विरुद्ध ही ये सुधर्मा स्वामी के महावीर है। आई रिक्वेस्ट अगेन, जो जिन जिन को ला सकते लाओ। ये महावीर अनूठे हैं, अर्थात आज की गाथा याद रखना, कई स्थावर हुईला कई त्रस सुशीला। हेलो, कई स्थावर की नहीं कहे, नो रिस्पॉन्स। त्रस की नहीं कहे, कोने आठे
1: त्रस।
0: तो बोलो, त्रस की नहीं कहे, जो रिस्पॉन्स देवे, कही देवे। ये त्रस दो जना रिस्पॉन्स देवे, एक सज्जन ने रिस्पॉन्स देवे, एक दुर्जन ने रिस्पॉन्स देवे। त्रस में दो प्रकार है, एक सज्जन ने रिस्पॉन्स देवे, एक धर्म को रिस्पॉन्स देता है, एक संप्रदाय को रिस्पॉन्स देता है। और जो जिसको रिस्पॉन्स देता है उसको उसी का प्रसाद मिलता है। हेलो, जिसको तुम रिस्पॉन्स दोगे उसी का प्रसाद मिलेगा, है ना? मजा है ना? कैसी लग रही वीर थी?
1: बढ़िया लग रही,
0: बढ़िया लग रही। आठे के बारे

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।